हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: अंश, अंश जल्दी आ. क्या हुआ? अरे जल्दी आना.
2: ये देख, ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

लोगों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू

0: लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सीजन.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: भक्ति धाम राली ब्रिंग्स यू चांदनी रास 2026 विद रेडियो नायरा एज मीडिया पार्टनर एंड को स्पॉन्सर। वेयर व्हाइट, डांस अंडर द चांदनी, सेलिब्रेट टुगेदर। एंजॉय गरबा एंड डांडिया विद डीजे रौनक। Festive shopping with clothing, jewelry and gifts, plus freshly prepared festive bites and complimentary traditional doodh poha. Join us Saturday, October 24th at Net Sports Morrisville. Doors open at 7 p.m., Garba starts at 8 p.m. Vendors are also welcome to showcase their products and services at special community-friendly rates. For vendor details, please contact Hemal Desai or Ripal Parikh at 919-610-4194. For tickets and event details, visit bhaktidhamrali.org and click on Chandni Ras 2026. You can also find Chandni Ras tickets on zephy.com.
2: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक्स। वेल हमार ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। कम एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल इवेंट ऑन द क्रिस्टल कोस्ट द एनसीडीयू बिलफिश टूर्नामेंट। More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing, excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. बजाने वाला है मिस मत करिए जरा एंजॉय करिए फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

The market are gone to one more time. Welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 डॉट विक्स बोरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स बोरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स बोरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka deshi, pakka local.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 49 AM, 99.9 FM, HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gani, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pata desi, pata local.

0: ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for the 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Daira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Dunes and Talk. पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, but don't worry, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है. वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है. वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.
1: तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा. कितना पोटेंशियल है तुझ में. क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Armito on the mic, writing what I feel.
1: मैं डब्लू हुईगुंड इंटरपोल से, जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करें।
2: Poo bhai poo, fugadi poo, you like me and I like you too. Poo bhai poo, fugadi poo, you like me and I like you too. Poo bhai poo, fugadi poo, you like me and I like you too.

0: रॉकेट गाय फुल जड़ी से तूने भरेले पॉकेट। अरे बारा बन मेरे जाई सबन, ये ले नाना का बॉम जाके उड़ा दे घर।
1: Fugadi poo, you like me and I like you too. Oh bhai poo, Fugadi poo, you like me.

0: Papa ni main menjadi.
1: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा एंड गेस व्हाट आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी सी यू देयर Thank you so much. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ कहानियों के साथ किस्सों के साथ.
2: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at
3: 919-101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, Pakka Desi, Pakka Local.
4: ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 for Telugu नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक वेल मॉरिस विले रेडी हो जाओ आपका

इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 फॉर 90 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डूंस एंड टॉक। वेल हमारे ट्राइंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी US नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as jet truck, parachute, jump team and aerobatic pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larking are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Pakka Desi, Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 414 AM पक्का देसी पक्का लोकल
1: Awesome Blossom Gaana आपने सुना on 101.9 FM 99.9 FM SD 449 AM 99.9 FM SD 34 Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Rooms and Talk. हमारे ट्राइंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है. कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई. कांट मिस द नाइट अंडर द लाइट नोन एज मिस्टर सैटरडे नाइट. पार्डी इज सेट डिलीवर एन अनफॉरगेटेबल शो पैक्ड विद द चार्ट टॉपिंग एंड टॉपिंग इट इज हाई एंड एनर्जी परफॉर्मेंसेस. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है. इस और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल.

रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 1490 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान 9 James ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 James ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Romantic Ghana on the Enjoy Channel on 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 4090 AM and 99.9 FM, SD34 Telugu, Naira Fame. I am Kipni Monica and you are listening to Final Rules and Talk. हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोका।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप लिसनर ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 49 AM, 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंग एंड रूम सेंटर।
1: वेल ग्लोरियस फोर्थ ऑफ ट्राइन पैलेस एंड अमेरिका 250th नॉर्थ कैरोलिना सेलिब्रेशन हमारे ट्राइंगल में सेलिब्रेट होने वाला है। जॉइन अस एज वी सेलिब्रेट अवर कंट्रीज 250th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। The day begins with the performance by Trine Palace, Pipe and Drum Corps, an interpretive reading of Declaration of Independence on the front stage at the Trine Palace. After the reading, ground and gardens are open to the public with no admission until noon. Immediately following the reading, the Pipe and Drum Corps marches of the palace grounds will take place there at Day of Newborn Independence Day Parade and their leads to the parade of its final destination. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल के लिए जाइए नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा। पता दीजिए, पता लो।

0: माहौल गाना था ना, एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मौरिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय, ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार
1: WCMC FM हॉली स्प्रिंग्स, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

यार कुछ लोगों के साथ हमारी तस्वीरें ही नहीं है, सोचो ना. मतलब वी हैवंट मेक अ गुड मेमोरीज विद सो मेनी पीपल्स येट. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो अर्जुन रामपाल शेयर्स पिक्चर्स विद मोहनलाल फ्रॉम द सेट्स ऑफ ऑपरेशन गंगा, कॉलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ शेयरिंग स्क्रीन विद द मलयालम सुपरस्टार एन ऑनर एंड डिस्क्राइबिंग हिम एज सुप्रीमली टैलेंटेड एंड गिफ्टेड. द अपकमिंग विष्णु मोहन डायरेक्टोरियल करेंटली बींग शॉट इन जॉर्जिया मार्क्स अर्जुन्स मलयालम डेब्यू. अर्जुन इज डेफिनेटली अ ग्रेट एक्टर एंड वी आई थिंक मलयालम इंडस्ट्री विल बी सो हैप्पी टू लेट हिम इन. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल बी बैक ओनली ऑन नायरा.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: होता नहीं प्यार।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तनिष्क रैले ट्रंक शो ना?
3: कब?
2: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
3: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
2: ठीक है, संडे देन। What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
1: आप सुन रहे हैं ना? Tata product. 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ऐसे हूँ मैं, वाइल्ड मेरी इमेजिनेशन ना पागल रही है वो पागल हो रही है, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन आए बरसेगा बादल, बरसेगा बरसेगा बादल, वो भी एक अरसे से प्यासी, मैं भी एक अरसे से पागल।

आईडी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: करने का। एक अरे दो तीन। लल्लू बेटे जरा वो कुर्सी और बोतल पकड़ाना। लाओ कैलाशनाथ भैया जरा हटके, जरा हटके।
1: सुनो सुनो क्या कर रहे हो तुम?
0: अरे जब आउट हुए हैं तो जरा ढंग से आउट होना भाई। थैंक यू फॉर चेयर। फिल्म शोले धर्मेंद्र शराबी सीन। मासी जी मासी जी
2: और तुसी ग्रेट हो धर्म पाजी।
3: अरे गांव वालो, अरे गांव वालो, ये जो बसंती है ना बसंती, इससे मेरा लगन होने वाला था। मगर ये बूढ़ी मासी,
4: मैंने क्या किया यार?
3: गांव वालो अगर मेरा लगन नहीं हुआ तो फिर सुसाइड, और फिर आप सब लोग जेल में चक्की पीसिंग, पीसिंग।
4: मैं तैयार हूँ मेरे बाप, नीचे आ जा।
3: नीचे आ जाओ। हाँ हेलो, मौसी भी तैयार और मेरी बसंती भी तैयार। इसलिए इसलिए

0: हमारे खानदान की परंपरा है और मुझे खुशी है कि तूने इस परंपरा को जिंदा रखा, बल्कि तू तो हमसे दो कदम आगे निकल गया। हम तो सब हिंदुस्तान में फेल हुए, तूने लंदन में फेल होकर दिखा दिया।
1: आप सचमुच खुश हैं?
0: खुश नहीं, बेहद खुश हूँ।
1: थैंक यू पॉप्स।
0: ये पढ़ाई लिखाई तो बेकार की चीजें होती हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: Hi, Radio Xavier wishes you a cool happy virgin day.
2: कॉलेज में नो शॉर्ट स्कर्ट्स प्लीज।
3: गुड मॉर्निंग बॉयज, नाइस कलर फ्यूज।
2: मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगा कि तुम कॉलेज में शॉर्ट स्कर्ट्स पहनकर बॉयज को एक्साइट करने की कोशिश। एक्सक्यूज मी, आई सेड नो शॉर्ट स्कर्ट्स इन द कॉलेज प्लीज।
4: मिस्टर गैंजा,
5: तुम कुछ कह रहे थे मनोज?
2: मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि कॉलेज में शॉर्ट स्कर्ट पहनना मना है।
5: What? लेकिन ये तो आजकल का फैशन है मनोज, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ लड़कियाँ तो आजकल स्कर्ट पहनती भी नहीं है।
2: Don't tell me that, Mr. Kinsa.
5: Yes, Mr.
6: और आज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या?
2: Oh, you are very quiet.
6: Cute.
2: You are very cute, Ali. पर क्या ना कि अगर आप इस तरह से कॉलेज में एक्सपोज करेंगी तो ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स।
5: यंग बॉयज एंड गर्ल्स, तुम्हारा मतलब मैं यंग नहीं हूँ?
2: यू आर तो यंग ही यंग जी।
5: लेकिन मल्होत्रा, तुम बहुत बोरिंग कपड़े पहनते हो।
2: आई नो, बट यू नो, जब तक तुम मिसेज मल्होत्रा लाइव थी,
5: या
2: तब तक मैं उनके लिए कभी कभी फैंसी कपड़े पहन लेता था।
5: Really?
2: पर अब क्या फायदा? जैसे अब से
5: कुछ नहीं। क्या फायदा मल्होत्रा? मिस्टर मल्होत्रा, मिस ब्रिगेंजा, मिसेज मल्होत्रा।

0: दो अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे।
1: रॉन्ग। 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है। अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए। गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट। चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो। एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल। जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स। Dance to the incredible beats of Amruta Manke and Nimesh Nagar with live music, delicious food, family, friends, and raat bhar garbani moj. Early bird tickets only until September 7th.
0: Tickets on Sulekha or Check the Rhythm and Ras Flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
3: जब आदमी को ये महसूस हो कि उसे किसी से मोहब्बत हो गई है तो उसे अपने दिल की बात फौरन कह देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला मना कर देगा, लेकिन आपको ये तसल्ली तो होगी कि आपने अपने दिल की बात कह दी। प्यार में दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, क्या जरूर देनी चाहिए।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: करने का। एक, अरे दो, अरे लल्लू बेटे जरा वो कुर्सी और बोतल पकड़ाना, लाओ। कैलाशनाथ भैया जरा हटके, जरा हटके।
1: सुनो सुनो, क्या कर रहे हो तुम?
0: अरे जब आउट हुए हैं तो जरा ढंग से आउट होना भाई। थैंक यू फॉर चेयर। फिल्म शोले, धर्मेंद्र, शराबी सीन। मासी जी, मासी जी,
2: और तुसी ग्रेट हो धर्म पाजी।
3: अरे गांव वालो, अरे गांव वालो, ये जो बसंती है ना, बसंती, इससे मेरा लगन होने वाला था। मगर ये बूढ़ी मासी,
4: मैंने क्या किया यार?
3: गांव वालो, अगर मेरा लगन नहीं हुआ तो फिर सुसाइड, और फिर आप सब लोग जेल में चक्की पीसिंग, पीसिंग।
4: मैं तैयार हूँ मेरे बाप, नीचे आ जा।
3: नीचे आ जाओ, आओ। मौसी भी तैयार और मेरी बसंती भी तैयार। इसलिए इसलिए

0: विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर टैंक क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर टैंक को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। जब तक जिंदा रहोगे तब तक सुनाई देगी। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं।
1: भूलना चाहिए भी नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदुस्तानी थप्पड़ का अंदाजा हो गया। ख्याल रहे, ये सिर्फ एक हाथ था, बाकी तुम खुद काफी समझदार आदमी हो।

0: S-O!
1: छोटे खान
2: जी,
1: इसकी दो गोलियां हल्दी वाले दूध के साथ दे देना।
2: बहुत अच्छे
1: कुलदीप, कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो, अनिल की शादी में तुम्हें बहुत डांस करना है, नाचना है, गाना है। उसकी मंगनी में भी तुम ही रौनक थे और उसकी शादी में। क्या हुआ?
2: देखता हूँ।

0: Daddy, Daddy, Daddy.
1: Daddy.
2: नमस्कार। डैमिट, हटाओ ये, क्या ये?
3: चूजा, शूट एवरीवन ऑफ दिस बास्टर्ड्स।
2: रिलैक्स जॉली, रिलैक्स। इन्होंने तो हमारा एक संदेशा पहुंचाना है, एक मैसेज राणा विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास। देवी जी, मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। उनसे कहिए कि ये रहे हम और ये रहे तुम और ये रहे तुम्हारी भारत मां के बेटे।

0: छोटे खां, छोटे खां, छोटे खां,
1: ये ओ,
0: ये क्या हुआ? ये सब क्या हुआ छोटे खां?
1: सब ये सो
2: अब तुम्हें इस थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी राणा, गूंज।

0: Rukmini. Rukmini. Rukmini. अनिल भी सांस ले रहा है। तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मत नहीं हारना है। चलते हैं हम लोग अस्पताल, वहां सब ठीक हो जाएगा।
1: चलो भाई।
2: लोगों ने मार दिया, लोगों ने मारा इसको। अरे बेचारी का बड़ा लड़का तो मर गया था, छोटा भी मर गया।
3: अरे पीछे हटिए ना भाई, आप लोग जहाँ खड़े खड़े भाती कर रहे हैं वो लोग तो गए अंदर।
0: जी
3: आप जाइए ना।
0: रुक्मिणी, रुक्मिणी।
3: अरे अरे आप लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ।
4: घायल
3: तो गए अंदर।
4: राणा साहब बोलने की शक्ति चली गई है।
3: क्या
4: इनकी बोलने की शक्ति चली गई है राणा साहब?
0: शक्ति चली गई।

0: जी हाँ, मम्मी एक बीमार कैदी को दवा देने गई थी, मैं भी साथ गया था।
1: किस तरह के दोनों?
2: आप घबराइए मत, सोचिए। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए।
3: चुप हो जा रुक्मिणी। अरे इससे क्या पूछते हो, ये क्या बताएगी बेचारी। इसके तो जवान बेटे मर गए, कितना भरा पूरा परिवार था बेचारी का।
1: त्रिपाठी साहब,
4: वीरेंद्र बाबू राणा कहाँ है?
1: वहां बैठे।
4: राणा, ये तुमने क्या किया? नौकरी से इस्तीफा दे दिया? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? दुनिया को यह जताना चाहते हो कि एक डॉक्टर डैंग जैसे आदमी ने तुम्हारी हिम्मत पस्त कर दी?
5: बिल्कुल नहीं।
4: तो फिर क्यों दिया इस्तीफा?
5: इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है कि अब इस डॉक्टर डैंग से युद्ध सिर्फ मैं लड़ूंगा।
4: अकेले?
5: अकेले
4: नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मंत्रालय में 4 दिन से मेरी यही बातचीत चल रही। सरकार ने तुम्हारा इस्तीफा तो नामंजूर कर दिया, बहरहाल जो तुमने एक्सपेरिमेंट की अर्जी दी थी वो मंजूर कर ली। ये रही तुम्हारी गवर्नमेंट की मंजूरी। अब तुम अपनी मर्जी के 3 कैदी चुन सकते हो और बीएसओ डॉक्टर डैंग के खिलाफ जिस खुफिया मिशन पे जाना चाहो जा सकते हो।

0: 72 कैरियों में से तुमने 3 मुजरिम चुने, और तुम्हें मालूम है राणा इन तीनों को फांसी का हुक्म हुआ है?
1: मालूम है मुझे।
0: हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों बेअक्ल, जज्बाती और छोटे किस्म के लोग हैं। ये अव्वल दर्जे के मुजरिम किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं।
2: जी
3: सर, क्या मैं इन 3 मुजरिमों से मिल सकता हूं?
4: जी हाँ, यह है आपका पहला कैदी बैजू ठाकुर। हाई कोर्ट ने 4 आदमियों के कत्ल के जुर्म में इसे फांसी का हुक्म दिया है। इस वक्त ये नासिक जेल में।

साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए, लो साहेब हमसे रूठ गए।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा. कितना पोटेंशियल है तुझ में. क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Armit on the mic, writing what I feel.
1: गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूँ सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आरजे पराग. 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश. मैं यही कह रहा था कि कैसे चल रही है आपकी आज की शाम. शाम तो काफ़ी खूबसूरत चल रही है और मौसम भी देखा जाए तो मौसम भी काफ़ी मज़ेदार मौसम है. इस मज़ेदार मौसम में एक कप अदरक की चाय या फिर अच्छी ऐसी झनझनाहट भरी कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. आपने ट्यून इन किया है रेडियो नायरा एंड इस शाम के इस माहौल में एक अच्छा सा गाना सुनना तो बनता है. सुनाने जा रहा हूँ आपको इस शाम का यह पहला गाना. बने रहिएगा रेडियो नायरा पर. रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: दो अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे।
1: रॉन्ग। 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है।
2: अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए।
1: गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट। चनिया चोड़ी अने केडियू रेडी राखो, एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल। जॉइन अस फ्राइडे अक्टूबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स। डांस टू द इनक्रेडिबल बीट्स ऑफ अमृता मंके एंड निमेश नगर विथ लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रात भर गरबानी मौज। अर्ली बर्ड टिकट्स ओनली अंटिल सितंबर 7।
0: टिकट्स ऑन सुलेखा और चेक द रिदम एंड रास फ्लायर ऑन रेडियो नायरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और radionaira.com। वन बीट वन सर्कल वन कम्युनिटी।
3: When was the last time your apartment community had a full-size climbing wall, retro arcade games, and a sports bar? Not just a leasing office and a mailroom. Welcome to Novel Morrisville, located right next to the Weight Competition Center. When you're off the clock, grill out at the outdoor chef stations, relax by the resort-style pool, or recharge at the on-site coffee shop. Enjoy a half-mile trail, a 2,880-square-foot private dog park, and a pet spa. Plus modern studio, 1, 2, and 3-bedroom homes. For a limited time, receive 10 weeks free base rent, plus an electronic gift card of up to $1,300 when you tour and lease this week only. Visit 909 Athletic Lane in Morrisville. Call 984-465-7758. Or explore novelmorrisville.com today. Novel Morrisville, your version of play starts here. Offer available on select homes. Minimum lease term applies. Other costs and fees are excluded. Contact the leasing team for complete offer details.
4: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22-carat gold and 18-carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest-free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3838.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट से एंजॉय किया आपने गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। और अब वक्त हो चुका है कि हम लोकल खबरों के बारे में जान ले। तो सबसे पहली खबर और गर्व की खबर आ रही है एंड ये खबर ये है कि रैली को नॉर्थ कैरोलिना में रहने के लिए नंबर वन और दरम को दूसरा सबसे बेहतरीन शहर चुना गया है। तो तालियां तो बनती है यार, मतलब कितना अच्छा है, रैली को पहला एंड दरम को दूसरा नंबर दिया है एंड इट्स नथिंग इज लाइक दैट। लाइक हमने प्राउड फील करना चाहिए कि हम रैली में रहते हैं एंड कितनी ये गर्व की बात है यार, मतलब इतने बड़े एरिया में रैली को रहने के लिए नंबर वन प्लेस चुना गया है। तो वाकई में ये काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुश खबर है। इस खुश खबर पे एक अच्छा गाना तो बनता है, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला ही गाना।
1: तारकोल की एक सड़क पर दो साए हैं, अंधेरे की नाजायज औलाद है शायद, घूंट घूंट खून पी कर दोनों पले हैं शायद। पातले जमीन है न सर पे आसमान है, जिंदगी कुचल गई ये उनकी दास्तान है।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

गाना सुन के मजा ही आ गया यार। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पटरी पर नाइट सैंड। खेल के मैदान से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। हमारे अपने कैरोलिना हरिकेन्स ने कमाल कर दिया है। स्टार गोलकीपर प्योत्र कोचेटकोव के साथ पूरे 2 साल का नया जो है एक्सटेंशन साइन कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले सीजन में हमारी टीम और मजबूत होने वाली है। चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार डालिया, मतलब रहने के लिए रैली जो है एक नंबर का शहर, डरम जो है वो 2 नंबर का शहर। उसके बाद खेल की दुनिया से, खेल के जगत से ये खबर आई है। सो प्राउड मोमेंट तो डेफिनेटली बनता है, गर्व की बात है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट। सुनाने जा रहा हूँ इस खुशखबरी के साथ आपको एक बहुत अच्छा गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

वेल एंजॉय किया आपने, एक गाना गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। एंड दूसरी मज़ेदार खबर हमारे जगत से ये है कि आज धर्म के नाइट लाइफ हब अमेरिकन टोबैको कैंपस में मशहूर फुल स्टीम ब्रीवरी एक नया आउटलेट खोलने जा रहा है। एंड 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आज से इसका शानदार टेप रूम जो है लोगों के लिए खुल रहा है। तो मैं ये कह रहा था अगर फ्री हो तो शाम को आप यहाँ जा सकते हो, काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ अ फुल स्ट्रीम ब्रेवरी, ये जो है काफ़ी मतलब फेमस नाम है। एंड यहाँ पे जो वाइब होती है ये अप टू द मार्क, हमेशा ही अप टू द मार्क होती है। तो लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबर है, मतलब आज का दिन मैं बताना चाहूँगा आपको, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि क्या ही बताऊँ आपको। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

एंड हेल्थ सेक्टर से काफी शानदार खबर आ रही है। यूएनसी हेल्थ ने हमारे कम्युनिटी के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। दरम और कैरी में बंद रहे नए मेडिकल कैंपस को अब और बड़ा किया जा रहा है, क्या बात है। एंड जिसमें जो है वो 144 नए बेड्स और एक आलिशान 6 मंजिला मेडिकल ऑफिस बिल्डिंग को मंजूरी मिल गई है, यानी अब पूरे ट्रायंगल एरिया को भी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सुविधाएं मिलने वाली है, क्या बात है। मतलब कहते हैं ना कि जिस एरिया का, जिस देश का जो सिस्टम होता है, हेल्थ केयर सिस्टम, वो अगर अच्छा होता है तो उन्हें सक्सेस माना जाता है। एंड ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है कि इतना बड़ा हब हेल्थ केयर से रिलेटेड बनने जा रहा है, तो नथिंग इज़ लाइक दैट। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।